यो हो रेडियो टाइगर 90.2 मेगाहर्ज। रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम। यति बेला बिहानको 11 बजेको छ।

सब को लड़की को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए खास बात खुदा ने।

0: आउँदछौँ।
1: प्रुफ राइटर आशाराम चौधरी, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9842866857 र 9815545522। एआर कम्प्युटर इन्स्टिच्युट, भुरीगाउँ बजार, बर्दिया। निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना। नेपाल नेत्रज्योति संघ, फतेवाल आँखा अस्पताल, पोलिटेका नेपालगंजको आयोजना र रुइक फाउन्डेशनको सहकार्यमा सञ्चालन हुने आँखा शिविरमा आँखा जाँच गराई लाभान्वित हुन अनुरोध गर्दछौ। शिविर सञ्चालन हुने मिति र स्थान: असार 1 गते आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र रानीपुर वडा नम्बर 2 र नेवलापुर स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 1। असार 2 गते बगनहा स्वास्थ्य चौकी वडा नम्बर 4 र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पनपट्टी वडा नम्बर 5। असार 3 गते शिवपुर स्वास्थ्य चौकी वडा नम्बर 6 र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र मोहनपुर वडा नम्बर 7। असार 4 गते ठाकुरद्वारा स्वास्थ्य चौकी चितकैया वडा नम्बर 8 र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र ठाकुरद्वारा वडा नम्बर 9। र असार 5 गते आधारभूत नगर अस्पताल ठाकुरबाबा नगरपालिका 3 नेउलापुर बर्दिया। नाम दर्ता, आवश्यक औषधि र मोतीबिन्दुको अपरेशन निशुल्क रहेको छ। नाम दर्ता समय बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म। समन्वय ठाकुरबाबा नगरपालिका सैनवार बर्दिया। आयोजक नेपाल नेत्रज्योति संघ बाँके, फतेवाल आँखा अस्पताल, पोलिटेक्रा नेपालगंज।
2: ये है आपका रेडियो, रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज़, वॉइस ऑफ बर्दिया, वॉइस ऑफ बर्दिया।

0: होइन त्यहाँ के को भिड लागेको छ के त्यस्तो जम्मै मान्छे त्यतै गइरहेछन् त
1: ल साल दिदी पनि सबै सामान एकै ठाउँमा पाइने अल पसल भएपछि अनि भिड लाग्दैन त
0: हामी कहाँ दैनिक उपभोगीका सम्पूर्ण सामग्री चिसो पेय पदार्थका सामानहरू कस्मेटिकका सामानहरू लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइने जानकारी गराउँदछौ सबैभन्दा बढी शाखा सञ्जाल भएको अल पसलको शाखा अब भुरिका बजार बर्दियामा अल पसल ठाकुरबाबु नगरपालिका एक कञ्चनपुर जाने बाटो फुरिकाउ बर्दिया प्रोप्राइटर हेमराज आचार्य सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98482979774
2: यो हो रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम यति बेला साँझको 5 बजेको छ
3: सुन्नुहोस् त उन्नत जातका तरकारीका बिउ बिजन कीटनाशक विषादी र मलखाप ल्याउनु पर्यो
4: पछि नेपालगञ्ज गुलेरियातिर गएको बेला ल्याउला नि
3: कहाँ त्यसो भन्नुभएको हजुर हाम्रै भुरिगाउँ बजारको उही चिर परिचित सृजना एग्रोभेटमा त सबै उन्नत जातका बिउ बिजन मल कीटनाशक विषादी पाइन्छ नि
2: हजुर तपाईँहरू पनि उन्नत जातका तरकारी एवं विभिन्न जातका खाद्य बालीका बिउ बिजन मल खाद कीटनाशक विषादीका साथै कृषि सामग्री सुपथ मूल्यमा किन्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्
5: उन्नत जातका बिउ बिजन कीटनाशक औषधि कुखुराका दाना चल्ला भाँडाहरू रासायनिक मल खाद थोक तथा फुटकरमा सुपथ मूल्यमा पाइन्छ प्रोप्राइटर फडकलाल पन्थी सिर्जना एग्रोभेट सेन्टर भुरिगाउँ बजार मेन चोक बर्दिया सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98649201
6: खुसीको खबर के तपाईँलाई पेट तथा कलेजो रोगको नयाँ तथा पुरानो समस्या छ यदि छ भने अब तपाईँको लागि खुसीको खबर काठमाडौँको नर्विक हस्पिटलमा कार्यरत पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेखर पौडेल अब प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिबार बीपी चोक नेपालगंज स्थित ग्रीन सिटी हेल्थ क्लिनिक एन्ड फार्मेसीमा आउनुहुनेछ यदि तपाईँलाई ग्यास एसिडिटी पेट पोल्ने खाना नपच्ने डकार धेरै आउने पेट फुल्ने तथा भारी हुने अल्सर बारम्बार पेट दुख्ने अपान्न वाए टाइफाइड एच पाइलोरी संक्रमण कब्जियत वा पखाला गल ब्लाडर स्टोन फ्याटी लिभर जन्डिस हेपाटाइटिस ए बी सी कलेजो सुनिने सिरोसिस कलेजोमा पानी जम्ने कलेजोमा सिस्ट वा ट्युमर अल्कोहलका कारण हुने लिभर ड्यामेज लगायतका ग्यास्ट्रिक वा कलेजोसँग सम्बन्धित कुनै पनि रोग छ भने उपचार तथा परामर्शको लागि अवश्य सम्पर्क राख्नुहोस् पेट र कलेजोका लक्षणहरूलाई हल्का नलिनुहोस् स्वस्थ जीवनका लागि आजै विशेषज्ञसँग जाँच गराउनुहोस् याद राख्नुहोस् प्रत्येक महिनाको तेस्रो सोमबार पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेखर पौडेलसँग उपचार तथा परामर्श सम्पर्क ग्रीन सिटी हेल्थ क्लिनिक एन्ड फार्मेसी बीपी चोक नेपालगंज नर्सिङ होमको पूर्वी गेट ठिक सामुन्य फोन नम्बर 081530105 र 97053500450
7: हाँ तब पतलिया याद करो तो जूटे राय लागत था पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा
8: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल कर
9: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है यही नाते बाढ़ से बचे खर्ती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेविका सबके संपर्क करे सूची तैयार पारा जाए एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए सर सफाई में ध्यान दिया जाए
10: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश
2: सूचना समाचार अनि मनोरंजन को साथ ही

0: ये है आपका रेडियो, रेडियो टाइगर वर्दिया की आवाज, वॉइस ऑफ वर्दिया।
1: नमस्कार, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज, गर्जन छ सधैँ बाजै।